कमसा जगा मिदिया मारुडा होता है कमाल तो आप तुम ही डरो आप गुंडवार बगार अंजाव यान नालियान तो सिदान लबुआ साल कारी बुआ तुम अंगात बापु पुआ तंगियन गिला चपुआ.